केवेनष्टेयाता तवा छोता सोवाने हकेवेनष्टेयाता न एञता सोवाने आ याय आ याय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्यं।